0: जापान में ए टाइप प्लग इस्तेमाल होते हैं जिनकी दो चिपटी पिने बिल्ली के आंखों की तरह लगती हैं, जबकि हमारे यहाँ ज्यादातर सी टाइप प्लग राइज हैं जिनमें दो गोल पिने होती हैं। अलबत्ता इस मुश्किल का भी जापानी अंदाज का एक सादा हल मौजूद है, एक यूनिवर्सल प्लग खरीद लीजिए, फिर ना जापानी प्लग को आपसे शिकायत रहेगी और ना पाकिस्तानी सामान को।
1: अरे वाह, यूनिवर्सल प्लग, जिंदाबाद खलील साहब ने खदीजा क्या नक्शा खींच दिया, बिजली और पानी का कनेक्शन यहीं लगता है, सब
2: तालियां तालियां होनी चाहिए कि इनको मिल गया ये कनेक्शन। अच्छा जी, यूनिवर्सल प्लग वाली बात तो बड़ी अहम है, यहाँ जो सामान लाते हैं उसका मसला तो हो जाता है, लेकिन यहाँ जापान से जब कोई बरकी आला पाकिस्तान ले जाए तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही मसला दरपेश होता है। वजह वही कि जापान की बिजली पाकिस्तान से मुख्तलिफ, सीधी सादी जो हुई ना,
1: वॉशिंग मशीन लेके गई थी
2: नहीं
1: अच्छा खलील साहब, उम्मीद है जापान में कुछ ना कुछ नया देखते रहेंगे, हमें हमारे सामने को महसूस करते रहेंगे और हम मुंतजिर रहेंगे खलील साहब का प्रोग्राम जापान जो मैंने देखा, इसके नित नए मौजूद के हम मुंतजिर रहेंगे। तो सामने प्रोग्राम का सिलसिला जारी है,
3: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
2: जी, और अब वक्त हुआ है मौसीकी का, और आज सुनाए जाने वाले गीत का उन्वान है सेमी यानी झींगर। इसको पेश करने वाले हैं काजुयोशी साइतो।
1: साइतो साहब 22 जून 1966 को जापान के तोचिगी प्रीफेक्चर में पैदा हुए। 25 अगस्त 1993 को उन्होंने अपने सिंगल बुक नो मीता बीटल्स वा टीवी नो नाका, यानी वो बीटल्स जिन्हें मैंने टीवी पर देखा, के साथ अपना कैरियर का आगाज किया। और अगले साल उन्होंने अरुते कायरो यानी घर को चलो की रिलीज के साथ बड़ी वसी तवज्जो हासिल की। उनके मशहूर गाने जिनमें उता उताई नो बहलाद यानी गुलूकार का गीत, और फिर शादी का गाना जुत्तो सुकी दत्ता यानी मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, और यासाशी को नारिताई मैं मेहरबान बनना चाहता हूँ, ये सब मदाहों और फनकारों दोनों में मकबूल क्लासिक बन चुके हैं।
0: एक गैर मामूली लाइव परफॉर्मर के तौर पर बड़े पैमाने पर तस्लीम शुदा साइतो ने सोलो परफॉर्मेंस से लेकर फुल बैंड कंसर्ट के साथ भी अपने फन का जादू जगाया। अपने रिकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस कैरियर के अलावा वो मुख्तलिफ फनकारों और मौसीकारों के साथ गाने लिखने, प्रोड्यूस करने और तावुन में भी सरगर्म हैं।
2: अच्छा, अपने डेब्यू की 30वीं सालगिरह मनाने के बाद काजुयोशी साइतो एक फाल और मुतनव्वो कैरियर जारी रखे हुए हैं। वो मुसलसल मौसीकी के नए अंदाज और तख्लीकी ताउन को दरियाफ्त कर रहे हैं।
0: उरता साहिबा के मुताबिक आज सुनवाया जाने वाला गीत सेमी यानी झींगर उदास गर्मियों का गाना है, जिसमें एक आदमी गर्म मरतूब दिन घूमता है और इसके साथ तन्हाई और कुछ खोने का बढ़ता हुआ एहसास उसे होता है। झींगर शदीद धूप और गायब होते हुए साए जिंदगी की नापायदारी और इस एहसास की अलामत है कि कोई अहम शख्स चला गया है।
1: इस गीत के बोलों में मरतूब मौसम और खिड़की से चिपके एक झींगर का जिक्र है जो चहचहा रहा है, तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूस लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जमा है, हर सू खामोशी, उस पर चट्टानों को छेदती झिंगर की आवाज़।
1: वाह, इन चंद अल्फाज ने ही समा बांध दिया।
0: अच्छा, इस अल्फाज से जो कानों को छेदती वाली बात है, उससे मुझे ख़ास तौर पे झिंगर की वो वाली किस्म याद आती है, सुकुसुकुबोशी, जो उसकी आवाज़ वाकई कानों को छेदती महसूस होती है, अपने परों को रगड़ के निकालता है ना वो आवाज़।
1: अच्छा।
0: तो ये था जापान की एक शायरी हाइकू जिसमें झिंगर का जिक्र है। हमारे पाको हिंद में भी तो झिंगर पर शायरी हुई है ना।
1: हाँ, अब खदीजा साहिबा से झिंगर पर नज़्म सुनते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर, नज़्म और वो भी झिंगर पर।
1: कोई भी सुनाइए।
2: जी जरूर, ख्वाजा हसन निजामी की नज़्म झिंगर का जनाजा पेश है भाई, उसके चंद अशआर पेश है।
1: अच्छा।
2: ना बिच्छू का सा जहरीला डंग था, ना सांप का सा डसने वाला फन था, ना कौवे की सी शरीर चोंच, ना बुलबुल की मानिंद फूलों की इश्कबाजी, शाम के वक्त मुसलसल बीन बजाता था।
0: वाह वाह, ये नज़्म
1: जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये वो वाला झिंगर है जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं पाकिस्तान में। झिंगर जिंदाबाद। चलिए अब सामीन से पूछ लेते हैं कि उनके इलाके में झिंगर शोर मचाते हैं या नहीं, और अगर मचाते हैं तो ये शोर किस तरह का होता है।
0: जी, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम कुछ और पैगाम दें। हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उनवान है,
2: हम आपकी आरा के मुंतजर हैं, इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
0: सामिन, हम आपके ढेरों पैगामात के मुंतजिर हैं। nhk.jp/urdu पर पैगामात भेजिए, और अब अपने मेजबानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 20 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रेफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रेफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ लगातार 9 दिनों से जारी अपने अभियानों पर नवीनतम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 9वीं शाम के हमले रविवार को पूर्वी अमरीकी समयानुसार रात 10 बजे तक चले। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि हमलों में ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, हवाई रक्षा और तटीय निगरानी स्थलों तथा मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया गया। उसका यह भी कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और आम नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के उद्देश्य से ये हमले किए गए। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकन्ना रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा का माहौल जटिल बना हुआ है और ये अप्रत्याशित रूप से बिगड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित अमरीकी राजनयिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ईरान का समर्थन करने वाले गुट विदेशों में अमरीकी हितों या दुनिया भर में अमरीका या अमरीकियों से संबंधित स्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी मीडिया के अनुसार मंत्रालय ने आखिरी बार मार्च में विश्वव्यापी यात्रा परामर्श जारी किया था, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जमकर गोलाबारी हो रही थी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने अपनी सुरक्षा सहायता योजना के तहत कंबोडिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रविवार को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय में एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कंबोडिया में जापान के राजदूत उएनो अत्सुशी और कंबोडिया के रक्षा मंत्री तिया सेइहा ने भाग लिया। आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी ओएसए का उद्देश्य रक्षा उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान करके समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत कंबोडिया को पहली बार सहायता प्रदान की जाएगी। जापान

0: 50 करोड़ येन यानी लगभग 30 लाख डॉलर मूल्य के संचार उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान करने की योजना बना रहा है। जापान सरकार ने ओएसए कार्यक्रम के तहत फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार प्रणाली प्रदान की है। मार्च में उसने थाईलैंड को आपदा राहत और बचाव उपकरण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी। कंबोडिया एक सैन्य संचार विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और जापान के थल आत्मरक्षा बल के साथ सहयोग की भी योजना बनाई जा रही है। हस्ताक्षर समारोह के बाद उएनो ने एनएचके को बताया कि उनका मानना है कि ओएसए के माध्यम से जापान और कंबोडिया के बीच सुरक्षा सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे सहयोग के विशिष्ट तरीकों पर कंबोडियाई पक्ष से परामर्श करेंगे। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है। विश्व में दूसरी रैंकिंग वाले स्पेन का मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में शीर्ष रैंकिंग वाले अर्जेंटीना से हुआ। खेल की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और 19 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी लामिन यमाल और मिडफील्डर रोद्री की अगुवाई में बार बार दाहिने फ्लैंक से अटैक किए। दोनों टीमों के जबरदस्त रक्षात्मक प्रदर्शन के कारण 90 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं हो पाया, जिसके बाद खेल अतिरिक्त समय में चला गया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा। स्पेन ने 4 टूर्नामेंटों में पहली बार चैंपियन खिताब जीता है, जबकि अर्जेंटीना लगातार 2 खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बनने से चूक गई। स्पेन ने लगभग पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं दिया। मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 गोल दागे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे 10 गोल दागते हुए 2 बार विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जापान की प्राचीन राजधानियों के पुरातात्विक स्थलों और उनसे संबंधित संपत्तियों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर सकती है। रविवार को दक्षिण कोरिया के पुसान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र आरंभ हुआ। जापान सरकार ने पश्चिमी प्रीफेक्चर नारा स्थित आसुका और फुजीवारा नामक प्राचीन राजधानियों को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में मौजूद ये पुरातात्विक स्थल 6 शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8 शताब्दी के प्रारंभ तक के हैं। इन प्राचीन राजधानियों को सूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा 24 से 27 जुलाई के बीच होने वाली है। पिछले महीने यूनेस्को की एक परामर्श संस्था ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दिया जाना चाहिए। संस्था ने इन प्राचीन स्थलों को अपने 4 मूल्यांकनों में से सर्वोच्च स्थान दिया है। सूची में शामिल होने पर ये जापान के 27वें विश्व धरोहर स्थल बन जाएंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रीफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइडो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरुनो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुक मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसुकुनत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटाघर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास। टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माई नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
5: इमा
1: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माई नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
5: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
5: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
5: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: वकारिमाश्ता।
5: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे, उनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
1: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है।

अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रेफेक्चर के तोयोता शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रेफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ लगातार 9 दिनों से जारी अपने अभियानों पर नवीनतम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 9वीं शाम के हमले रविवार को पूर्वी अमरीकी समयानुसार रात 10 बजे तक चले। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि हमलों में ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, हवाई रक्षा और तटीय निगरानी स्थलों तथा मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया गया। उसका यह भी कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और आम नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के उद्देश्य से ये हमले किए गए। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकन्ना रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा का माहौल जटिल बना हुआ है और ये अप्रत्याशित रूप से बिगड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित अमरीकी राजनयिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ईरान का समर्थन करने वाले गुट विदेशों में अमरीकी हितों या दुनिया भर में अमरीका या अमरीकियों से संबंधित स्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी मीडिया के अनुसार मंत्रालय ने आखिरी बार मार्च में विश्वव्यापी यात्रा परामर्श जारी किया था, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जमकर गोलाबारी हो रही थी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने अपनी सुरक्षा सहायता योजना के तहत कंबोडिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रविवार को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय में एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कंबोडिया में जापान के राजदूत उएनो अत्सुशी और कंबोडिया के रक्षा मंत्री तिया सेइहा ने भाग लिया। आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी ओएसए का उद्देश्य रक्षा उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान करके समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत कंबोडिया को पहली बार सहायता प्रदान की जाएगी। जापान 50 करोड़ येन यानी लगभग 30 लाख डॉलर मूल्य के संचार उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान करने की योजना बना रहा है। जापान सरकार ने ओएसए कार्यक्रम के तहत फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार प्रणाली प्रदान की है। मार्च में उसने थाईलैंड को आपदा राहत और बचाव उपकरण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी। कंबोडिया एक सैन्य संचार विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और जापान के थल आत्मरक्षा बल के साथ सहयोग की भी योजना बनाई जा रही है। हस्ताक्षर समारोह के बाद उएनो ने एनएचके को बताया कि उनका मानना है कि ओएसए के माध्यम से जापान और कंबोडिया के बीच सुरक्षा सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे सहयोग के विशिष्ट तरीकों पर कंबोडियाई पक्ष से परामर्श करेंगे। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है। विश्व में दूसरी रैंकिंग वाले स्पेन का मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में शीर्ष रैंकिंग वाले अर्जेंटीना से हुआ। खेल की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और 19 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी लामिन यमाल और मिडफील्डर रोड्री की अगुवाई में बार बार दाहिने फ्लैंक से अटैक किए। दोनों टीमों के जबरदस्त रक्षात्मक प्रदर्शन के कारण 90 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं हो पाया, जिसके बाद खेल अतिरिक्त समय में चला गया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा। स्पेन ने

0: चार टूर्नामेंटों में पहली बार चैंपियन खिताब जीता है, जबकि अर्जेंटीना लगातार दो खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बनने से चूक गई। स्पेन ने लगभग पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं दिया। मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 गोल दागे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे 10 गोल दागते हुए दो बार विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जापान की प्राचीन राजधानियों के पुरातात्विक स्थलों और उनसे संबंधित संपत्तियों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर सकती है। रविवार को दक्षिण कोरिया के पुसान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र आरंभ हुआ। जापान सरकार ने पश्चिमी प्रिफेक्चर नारा स्थित आसुका और फुजीवारा नामक प्राचीन राजधानियों को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में मौजूद ये पुरातात्विक स्थल 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के हैं। इन प्राचीन राजधानियों को सूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा 24 से 27 जुलाई के बीच होने वाली है। पिछले महीने यूनेस्को की एक परामर्श संस्था ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दिया जाना चाहिए। संस्था ने इन प्राचीन स्थलों को अपने 4 मूल्यांकनों में से सर्वोच्च स्थान दिया है। सूची में शामिल होने पर ये जापान के 27वें विश्व धरोहर स्थल बन जाएंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रिफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रिफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकारिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आह काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमे ओसोकुनत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटाघर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ।
5: इमा
1: का अर्थ है अभी, और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माए नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट, और
5: माए
1: का अर्थ है सामने। तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
5: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
5: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
5: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: वकारिमाश्ता।
5: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे, ओनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
1: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने सलामती तआवुन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने का फैसला किया है। कम्बोडिया की वजारत दिफा में इतवार के रोज माहिदों पर दस्तखतों की तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें कम्बोडिया में जापान के सफीर उएनो आसुशी और कम्बोडिया के वजीर दिफा टी ए साहा ने शिरकत की। ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी ओएसए फ्रेमवर्क दिफाई साजो सामान और दीगर मवाद की पेशकश करके हम ख्याल ममालिक के साथ सलामती तआवुन बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के तहत कम्बोडिया के लिए ये पहली फरामी होगी। जापान 500 मिलियन येन या तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के मवासलाती आलात और गश्ती कश्तियां फराहम करने का इरादा रखता है। जापानी हुकूमत ने फिलिपाइन को ओएसए प्रोग्राम के जरिए साहिली निगरानी के रेडार सिस्टम फराहम किए हैं। मार्च में उसने थाईलैंड को आफात के खिलाफ रद्द अमल और इमदाद व बचाव के आलात फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया था। कम्बोडिया मिलिट्री कम्युनिकेशन स्कूल कायम करने का इरादा रखता है और जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स के साथ तआवुन का भी मंसूबा बना रहा है। जापानी सफीर ने दस्तखत की तकरीब के बाद एनएचके को बताया कि उनका ख्याल है कि ओएसए के जरिए जापान और कम्बोडिया के दरमियान सलामती तआवुन एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कम्बोडिया के साथ तआवुन के ठोस तरीकों पर मुशावरत करना चाहेंगे। मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर के स्पेन और टॉप रैंक वाले अर्जेंटाइन के दरमियान मैच हुआ। मैच पर शुरू से ही स्पेन हावी रहा और दाएं जानिब से बार बार हमले किए। टीम की क्यादत 19 साल फॉरवर्ड लामीन या महल और मिडफील्डर रोड्री कर रहे थे। दोनों टीमों ने मजबूत दिफा का मुजाहरा किया जिसमें 90 मिनट का खेल बगैर किसी गोल के बराबर रहा और फैसले के लिए इजाफी वक्त दिया गया। मुतबादल के तौर पर खेल में शामिल होने वाले फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए फैसला कुन गोल करके इस तातुल को तोड़ दिया। स्पेन 4 टूर्नामेंट्स में पहली बार चैंपियन बना है जबकि अर्जेंटाइन मुसलसल टाइटल जीतने वाली तारीख की तीसरी मर्दों की टीम बनने में नाकाम रहा। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी को अपना खेल खेलने से रोकते हुए स्पेन ने फाइनल मैच के ज्यादातर वक्त पर अपना काबू रखा। मेसी ने 8 गोल के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फ्रांस के किल ए हान बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए। वो 2 बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपको है कि अक्वाम मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को जापान के कदीम दारुलहुकूमतों के आसार कदीमा मकामात और उनसे मुतल्लिका अमलाक को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करेगी। यूनेस्को ने इतवार को जनूबी कोरिया के शहर पुसान में अपनी आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास का आगाज किया। जापान की हुकूमत ने मगरबी प्रिफेक्चर नारा में वाकया आसुका और फुजीवारा के कदीम दारुलहुकूमतों को फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। आसारे कदीमा के ये मकामात 6वीं सदी के अवाखिर से 8वीं सदी के अवाइल तक के हैं। वो आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में हैं। कदीम दारुलहुकूमतों को शामिल करने या ना करने के बारे में बातचीत 24 और 27 जुलाई के दरमियान होनी है। गुज़श्ता माह यूनेस्को के एक मशावरती इदारे ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को आलमी सकाफती विरसा मकामात के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए और उन कदीम मकामात को 4 में से सबसे आला दर्जा दिया जाए। रजिस्टर होने की सूरत में ये मकामात जापान का 27वां आलमी सकाफती विरसा मकाम बन जाएंगे।
1: और अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान भर में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और मुल्क के कुछ मशरकी हिस्सों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि कांतो कोशिन और तोकाई इलाकों में बारिश का मौसम बज़ाहिर खत्म हो गया है। हुकाम ने कई इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। पीर की दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के टोयोटा शहर में दिन के वक्त का दर्जा हरारत 38.5 डिग्री اور ابراکی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا. اور امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف کاروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کا مسلسل نواں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار رات 10 بجے ختم ہوا. اور حکومت جاپان نے سلامتی تعاون کے اپنے فریم ورک کے تحت کمبوڈیا کو دفاعی ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रीफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ लगातार 9 दिनों से जारी अपने अभियानों पर नवीनतम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 9वीं शाम के हमले रविवार को पूर्वी अमरीकी समयानुसार रात 10 बजे तक चले। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि हमलों में ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, हवाई रक्षा और तटीय निगरानी स्थलों तथा मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया गया। उसका यह भी कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और आम नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के उद्देश्य से ये हमले किए गए। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकन्ना रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा का माहौल जटिल बना हुआ है और ये अप्रत्याशित रूप से बिगड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित अमरीकी राजनयिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ईरान का समर्थन करने वाले गुट विदेशों में अमरीकी हितों या दुनिया भर में अमरीका या अमरीकियों से संबंधित स्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी मीडिया के अनुसार मंत्रालय ने आखिरी बार मार्च में विश्वव्यापी यात्रा परामर्श जारी किया था, जब अमरीका, इसराइल और ईरान के बीच जमकर गोलाबारी हो रही थी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने अपनी सुरक्षा सहायता योजना के तहत कंबोडिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रविवार को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय में एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कंबोडिया में जापान के राजदूत उएनो अत्सुशी और कंबोडिया के रक्षा मंत्री तिया सेइहा ने भाग लिया। आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी ओएसए का उद्देश्य रक्षा उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान करके समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत कंबोडिया को पहली बार सहायता प्रदान की जाएगी। जापान 50 करोड़ येन यानी लगभग 30 लाख डॉलर मूल्य के संचार उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान करने की योजना बना रहा है। जापान सरकार ने ओएसए कार्यक्रम के तहत फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार प्रणाली प्रदान की है। मार्च में उसने थाईलैंड को आपदा राहत और बचाव उपकरण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी। कंबोडिया एक सैन्य संचार विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और जापान के थल आत्मरक्षा बल के साथ सहयोग की भी योजना बनाई जा रही है। हस्ताक्षर समारोह के बाद उएनो ने एनएचके को बताया कि उनका मानना है कि ओएसए के माध्यम से जापान और कंबोडिया के बीच सुरक्षा सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे सहयोग के विशिष्ट तरीकों पर कंबोडियाई पक्ष से परामर्श करेंगे। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है। विश्व में दूसरी रैंकिंग वाले स्पेन का मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में शीर्ष रैंकिंग वाले अर्जेंटीना से हुआ। खेल की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और 19 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी लामिन यमाल और मिडफील्डर रोद्री की अगुवाई में बार बार दाहिने फ्लैंक से अटैक किए। दोनों टीमों के जबरदस्त रक्षात्मक प्रदर्शन के कारण 90 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं हो पाया, जिसके बाद खेल अतिरिक्त समय में चला गया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा। स्पेन ने 4 टूर्नामेंटों में पहली बार चैंपियन खिताब जीता है, जबकि अर्जेंटीना लगातार 2 खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बनने से चूक गई। स्पेन ने लगभग पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं दिया। मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 गोल दागे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे 10 गोल दागते हुए 2 बार विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जापान की प्राचीन राजधानियों के पुरातात्विक स्थलों और उनसे संबंधित संपत्तियों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर सकती है। रविवार को दक्षिण कोरिया के पुसान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र आरंभ हुआ। जापान सरकार ने पश्चिमी प्रीफेक्चर नारा स्थित आसुका और फुजीवारा नामक प्राचीन राजधानियों को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में मौजूद ये पुरातात्विक स्थल 6 शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8 शताब्दी के प्रारंभ तक के हैं। इन प्राचीन राजधानियों को सूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा 24 से 27 जुलाई के बीच होने वाली है। पिछले महीने यूनेस्को की एक परामर्श संस्था ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दिया जाना चाहिए। संस्था ने इन प्राचीन स्थलों को अपने 4 मूल्यांकनों में से सर्वोच्च स्थान दिया है। सूची में शामिल होने पर ये जापान के 27वें विश्व धरोहर स्थल बन जाएंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रीफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी-मोशी, ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसोकुनत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटा घर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास, टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
5: इमा
1: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माए नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
5: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
5: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
5: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: वकारिमाश्ता।
5: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे,

0: उनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
1: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
0: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
1: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने सलामती तआवुन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने का फैसला किया है। कम्बोडिया की वजारत दिफा में इतवार के रोज माहिदों पर दस्तखतों की तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें कम्बोडिया में जापान के सफीर उएनो आसुशी और कम्बोडिया के वजीर दिफा टी ए साहा ने शिरकत की। ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी ओएसए फ्रेमवर्क दिफाई साजो सामान और दीगर मवाद की पेशकश करके हम ख्याल ममालिक के साथ सलामती तआवुन बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के तहत कम्बोडिया के लिए ये पहली फरामी होगी। जापान 500 मिलियन येन या तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के मवासलाती आलात और गश्ती कश्तियां फराहम करने का इरादा रखता है। जापानी हुकूमत ने फिलिपाइन को ओएसए प्रोग्राम के जरिए साहिली निगरानी के रेडार सिस्टम फराहम किए हैं। मार्च में उसने थाईलैंड को आफात के खिलाफ रद्द अमल और इमदाद व बचाव के आलात फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया था। कम्बोडिया मिलिट्री कम्युनिकेशन स्कूल कायम करने का इरादा रखता है और जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स के साथ तआवुन का भी मंसूबा बना रहा है। जापानी सफीर ने दस्तखत की तकरीब के बाद एनएचके को बताया कि उनका ख्याल है कि ओएसए के जरिए जापान और कम्बोडिया के दरमियान सलामती तआवुन एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कम्बोडिया के साथ तआवुन के ठोस तरीकों पर मुशावरत करना चाहेंगे। मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर के स्पेन और टॉप रैंक वाले अर्जेंटाइन के दरमियान मैच हुआ। मैच पर शुरू से ही स्पेन हावी रहा और दाएं जानिब से बार बार हमले किए। टीम की क्यादत 19 साल फॉरवर्ड लामीन या महल और मिडफील्डर रोड्री कर रहे थे। दोनों टीमों ने मजबूत दिफा का मुजाहरा किया जिसमें 90 मिनट का खेल बगैर किसी गोल के बराबर रहा और फैसले के लिए इजाफी वक्त दिया गया। मुतबादल के तौर पर खेल में शामिल होने वाले फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए फैसला कुन गोल करके इस तातुल को तोड़ दिया। स्पेन 4 टूर्नामेंट्स में पहली बार चैंपियन बना है जबकि अर्जेंटाइन मुसलसल टाइटल जीतने वाली तारीख की तीसरी मर्दों की टीम बनने में नाकाम रहा। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी को अपना खेल खेलने से रोकते हुए स्पेन ने फाइनल मैच के ज्यादातर वक्त पर अपना काबू रखा। मेसी ने 8 गोल के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फ्रांस के किल ए हान बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए। वो 2 बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपको है कि अक्वामे मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को जापान के कदीम दारुलहुकूमतों के आसार कदीमा मकामात और उनसे मुतल्लिका अमलाक को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करेगी। यूनेस्को ने इतवार को जनूबी कोरिया के शहर पुसान में अपनी आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास का आगाज किया। जापान की हुकूमत ने मगरबी प्रिफेक्चर नारा में वाकया आसुका और फुजीवारा के कदीम दारुलहुकूमतों को फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। आसारे कदीमा के ये मकामात 6वीं सदी के अवाखिर से 8वीं सदी के अवाइल तक के हैं। वो आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में हैं। कदीम दारुलहुकूमतों को शामिल करने या ना करने के बारे में बातचीत 24 और 27 जुलाई के दरमियान होनी है। गुज़श्ता माह यूनेस्को के एक मशावरती इदारे ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को आलमी सकाफती विरसा मकामात के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए और उन कदीम मकामात को 4 में से सबसे आला दर्जा दिया जाए। रजिस्टर होने की सूरत में ये मकामात जापान का 27वां आलमी सकाफती विरसा मकाम बन जाएंगे।
1: और अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान भर में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और मुल्क के कुछ मशरकी हिस्सों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि कांतो कोशिन और तोकाई इलाकों में बारिश का मौसम बज़ाहिर खत्म हो गया है। हुकाम ने कई इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئی جی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور ابراقی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا. اور امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف کاروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کا مسلسل 9واں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار رات 10 بجے ختم ہوا. اور حکومت جاپان نے سلامتی تعاون کے اپنے فریم ورک کے تحت کمبوڈیا کو دفاعی ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں.